0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
2: ओ दो दो नमोनियो देखा रमो क्लोना चोली को